0: चाउचाउ
1: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर्स शुक्ला गण्डकी साथ सेरा प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 9856202779।
2: प्रणाम, अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराही 103.8 मेगाहर्ट्ज़ अंतर मन के आवाज।

0: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोर बाराही 103.8 मेगाहर्ज
1: स्टुडियो टाइम
2: अहिले दिउँसोको 1 बज्यो
1: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु का साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98160 95301
3: Cameras, standby. Reload music.
4: नेपाली चलचित्रका गीत संगीतहरू

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टूडियो टाइम
2: अहिले साँझको 6 बज्यो
1: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर कर प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

0: 108.8 अन्तर्मनको आवाज
1: स्टुडियो टाइमचेक
2: अहिले रातिको 9 बज्यो
1: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95301

0: 103.8 अन्तरमन को आवाज
1: स्टुडियो तान्छेन
2: अहिले बिहानको 5 बज्यो
1: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साटफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95301